हारून लांत्रा दसम से तीसरा तरीके देदास देख दाव का श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान अगत अवरणीय गायक होगे सातुटुमत नारतन में जनता और लंगाओं ने गायन साइलिय निशा ओ दशक गणनावक जनप्रियत्व इहलिंग सिटिया बाइला संगीत नव रसयक नव शब्दक सा वेदिका संग सजीवीकरण गिना कलाकार मैनिके मालिकावे सीनी मल्ली सीता मन में मल मैनिके वनी गीत होगे नामे अमरणीय कला होगे गायन शैल सरल सातुटु सा जनताव समग सृजु संबंधक अतिकल विलासिताव किं प्रीति बुना विविध संगीत खंडायम समग वेड करमिं श्रीलंका बाइला संगीत वगेम अनिकुत गीत जात्यंत्र वेदिका वलटत गिन गिय कलाकार अरुण लंत्रागे गीत अदत उत्सववल विवाहवल सह सतुट अवस्थावल अनिवार्यं अमुत्ते सतुट नर्तनीय सह जीविते रसे मतक करवन अमरणीय अंडाक

टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतुटुम नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैली निशा ओगे बाइला सा अनिकुत गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पस्तुना इदास नम से हत्यावत असुअ दशके बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबू सरलत्व सतुट सा जनता समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल फाइनियंस अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय राशे मतक करना अमरणीय हांडा

श्रीलंका संगीते मृदुमत सुवर्दन स्वेदी समरेकिंग जैसा जाना हुर्दे अमरणी गायके ओगे गायन शैल्य सारत मनरम कमत हदवत सुदुम लंगावन विलासिताव किं पीरी तिबुना इद्दास नम से पना हैट दस के सिनेमा गीत जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व गत्ता ऐदो यालवने संद तारका पहां ओबामा सेमिंग आदरे वैनी गीत उगे नामे अमरणीय कला ओगे हंड्रेड तिबु मृदत्व निर्माणशीलत्व सा गीतेट गौरव देने गायन विलासिताव निशा ओहु विनसम कलाकार वेकुना श्रीलंका संगीतेट दीर्घ काल्यक सेवे कल नियतमानी गौरवत्वेट पात्र कलाकार वे आयो डेनिस के गीत अदत असन विट सितट सोयक मतक सुवंदक सा सत्य संगीत रसयक लभिनवा

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बायला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान गत जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्तनमय वेदिका व सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बायला लोके अमरणीय नामक बवट पत्तुना हत्या व असुव दशक बायला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्ली मल मेनिके वेनी जनप्रिय बायला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासितावकिन पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय बायला रसे मतक्रोण अमरणीय हंडाक

प्रिया सूर्य सेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार मृदु सुवदन संवेदी हंडत सरल गीत रसिया निशा ओगे गीत अदत जनप्रिय आयमी नोवी जीवमानो पवतिनो हत्या वसुव दशक प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलासिताव किंग प्रीतिमुन निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओहु श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाहनक तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदर सितट सोयक सेनेसक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ